दयाल होए मेरा स्वामी, जिस गुरसिख गुरु उपदेश सुनावे, जन नाबिक धूड़ मंगे तिस गुरसिख की, जन नाबिक धूड़ मंगे

परम सत्कारयोग सत्संग जीओ। आओ हुण आपां भाई जसवीर सिंह जी पौंटा साहब वाले पासिओं शब्द कीर्तन सरवण करिए। शब्द भगत कबीर साहब जी का उच्चारण किया होया जो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज उपदेश कर रहे हैं। मन ना डिगे तन काहे को डराए, मन नूं डराने दी की लोड़ है। मन ना डिगे तन काहे को डराए, चरण कमल चित

0: अंतन पापत देव सबे मुल इंद्र महाशिव जो करी केड़ा अंत न पारा बारिया
1: अंत न पावत देव सबे मुल इंद्र महाशिव जो करी
0: अंत न पावत

संसार दे जियां उते कलगियां वाले पातशाह ने अज दा दिहाड़ा पवित्र दिहाड़ा मनांदिया होया खालसा मेरो रूप है खास खालसे में हो करो निवास। पातशाह फरमान करते ने ये जो खालसा है ये मेरा ही रूप है खालसे मैं हूं करो निवास मैं इस खालसे विच ही निवास करता हां। जो नीच जातां दे अखोती हन गरीब हन मजलूम हन कलगियां वाले पातशाह ने बख्शिशां कीतियां बड़ियां रहमतां कीतियां दर्जा दिता अपना रूप ही बना लिया। सो आओ सात संगत जीओ अज के दिहाड़े नूं पवित्र जानदिया होया आपां सारे जाने मिलके

जिन्ना चिर यह परिपूर्ण परमात्मा अकाल पुरख के चरणों नाल जुड़िया है, मेरा खालसा यह मेरा ही रूप है। पर जदों यह भरमा विच वहमा विच पै गया, गुके जठेरे मनन लग पिया, मड़ी मसाणी मनन लग पिया, इहदे मन विच द्वेष आ गई, इहनूं इह पता लग गया।

ये चार कुरैतां छड़ देन ते पांच कतारां विच पक्के हो जान रैत रखन वंड के छकन।

0: DM Music पेश कर देने शब्द गुरबाणी गुरु रामदास राखो सरनाई।
1: गुरु रामदास राखो सरनाई।
0: भाई किशन पाल सिंह जी दी रस भिन्नी आवाज विच
1: राखो सरनाई।
0: ए पेशकश

करती है। ऐ मनुख तू चेते कर, माता के उदर में प्रतपाल करे। सो क्यों मनो विशारिये, मनो क्यों विशारिये, एवड दाता जो अग्न में आहार पहुंचावे। ओ वेला याद कर, शेर तले पांव ऊपरे, वसंदो कोहतड़े थाए। नानक सो तनी क्यों विशारिये, उदरे जिसके दाएं। ओ समा चेते कर, जदों तू पुठा लटकिया होया सी, ते कितनी माड़ी जगह ते कोहथड़े थां ते तू लटक रिया सैं, जिथों मल मूत्र लंघ रिया सी, उस वेले तू अरदास करदा सैं, हे निरंकार मैनू इस कुंभी नरक विचों कढ़, मैं तेरा सिवरन करांगा, तेरा नाम जपांगा। ओए तैनू क्यों भुल गया ओ वेला, तू क्या सी मैं अमृत वेले गुरबाणी गासा, सत संगत बह के हर नाम दिया सा, तू भुल गया वैदे पै गए हनेरे। ओए सुन मन गाफुल, पल पल करके तेरा जीवन घटता जा रहा है,

धन गुरु तेग बहादुर सोच लै भाई धार लै अपने मन विच इसनो धार लै मतलब वसा लै मन विच सिर्फ चार दिन की गल है बंदा नाल तकबर फरिया कूड़े करदा माने मैं हां चतर सियाणा सुंदर शेर आप नू जाने आकड़ आकड़ चले किसे दे नक तले नहीं आने साई लोका जद फूका निकले आवे होश ठकाने ये बंदा जिन्ना मर्जी मान कर लवे पर उदो तक है जदों सब कुछ ठीक है जो थोड़ी भी चीज गलत हो जावे कहता जी मैं बड़ा तकड़ा हां बलवान हां पर एक दिन मंजे ते पैजे निडाल हो जाता है। धन गुरु तेग बहादुर मसालो अपने मन में राग सिंधी

कुत्ते हलत मन सुगावे। ठंडा तत्ता कोयला काला करके हथ जलावे। ज्यों चक चुंदर सप दी अन्ना कोड़ी कर दिखलावे। जान रसौली देह विच वटी पीड़ रखी शर्मावे। वंश कपूत कुलछना छड़ियां बने न विच समावे।

मुंह कालख भरिए वड़िए कज्जल कोठड़ी मुंह कालख भरिए कल्लर खेती बीजिए केहो काज न सरिए टूटी पिंगे पिंगिए पैटोए मरिए कन्ना फड़ मन तारुआ क्यों दुत्तर तरिए अगलाए मंदर समय तिस नाल न फरिए

जैसे घाव घायल कै जतन कै निको होत, पीर मिट जाए लीक मिटत न पेखी है। जैसे घाव घायल कै जतन कै निको होत, पीर मिट जाए लीक मिटत न पेखी है। जैसे फाटो अंबर सियाए पुन ओडियत, नांगो तो न होए तो थेगरी परेखी। जैसे फूटो बासन सवार देत है ठठेरो, गिरत न पानी पे गठीलो पेख पेखी है। तैसे गुरशरण विमुख

वंशघात अपराध करारे, मद पी जुए खेल दे जोहन पर नारे, मोहन पराए लक्ष्मी ठग चोर चगारे, विश्वास ध्रोई आकृत घन पापी हत्यारे, लख करोड़ी जोड़ियन

फिर चक्की चट्टे कुत्ता राज बहा लिए फिर चक्की चट्टे सप्पे दूध पिया लिए व्यो मुखों सुटे सप्पे दूध पिया लिए विहो मुखों सटे पत्थर पानी रखिए मन हठ न घटे चोआ चंदन पर हरे खरखे पलटे क्यों निंदक पर निंदो हठ मूल न हटे अपन हथी अपनी जड़ आप उपटे अपन

देख के कर दे भरवासा। थल विच तपन पठियां क्यों लहे प्यासा। सोने राज कमाई है कर भोग बिलासा।

लगी बरसन लक्ष्मी। बाबे दा आउना सुन के सारे लोग उधर नू आ गए जिधर गरीब नू आज पातशाह बैठे सन। लगी बरसन

हे नानक जी ये गल दसो, एक पासे ते तुसी उदासी पेख तारिया पे, एक पासे तोड़े बाल बच्चे तोड़ा परिवार तुसी ग्रिस्ती हो।

फिर उन्हों के घर मंगन जाई, बिन दिते किच हाथ न आई। ए सुन बचन जुगीसरा, पैसा कहने हूं झगड़ा कर लगे ने, गुरु नानक नु डराउन लगे ने, अपनी शक्तियां दा प्रभाव पाती।

बाबा जी जिस वेले मुल्तान गए ना ते उथे दे पीरा नू पता लगा के वड्डा पीर आया एदे अगे साडी दाल नहीं गलनी ते उन्हां ने अपने एक सेवक नू अपने चेले नू एक दुध दा छन्ना भर के भेजिया जिदा मतलब सी भी पीरीपुर मुल्तान इथे तेरी लोड़ ही नहीं इथे अगे पीरा नाल भरिया पिया तेरी।